हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
1: एफएम। एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म डॉक्यूमेंट

0: एंट्री फिल्म वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पूरब में जगन्नाथ विराजे, पश्चिम में द्वारका ललाम, दक्षिण रामेश्वरम सुशोभित, उत्तर मंडित बद्रीनाथ धाम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप media में career बनाना चाहते हैं तो join कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये course offer करता है Bachelor's and Master's degree in Journalism and Mass Communication, specially designed for film, television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यही एक वजह है कि वो खूबसूरत झलकती है इनके काम के माध्यम से। साथ ही साथ एक एनजीओ भी आप रन करती हैं, होप बी लिट, आप उसके फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती हैं और आप एक फिल्म मेकर हैं, अच्छी लेखिका हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही हक जी।
1: आपका बहुत आभार।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत अच्छा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। शाम में कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? ठीक है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये जो हंसने की जो अदा है, हंसते मुस्कुराते आप लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, मुझे लगता है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर आप मुस्कान ला पाते होंगे अपने काम के माध्यम से। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप एक एनजीओ रन करती हैं, तो प्लीज बताइए अपने बारे में, उस एनजीओ के बारे में।
1: डेफिनेटली होप बी लिट जो मेरा एनजीओ है, जिसका मतलब है कि उम्मीद हमेशा कायम रहे सब में, वो एक ग्लोबल एनजीओ है, लॉस एंजलिस बेस्ड है, लेकिन हमारा काम एक्चुअली हर कॉन्टिनेंट में हो चुका है। हम लोग अफ्रीका जा चुके हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑब्वियसली हम वहाँ बेस्ड हैं, और इंडिया में भी हमारे बहुत काम चलते हैं। और अभी हमारा रुख मेंटल हेल्थ की ओर जुड़ा है, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं, कि एपिडेमिक बनता जा रहा है अमंग्स द यूथ, तो हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ वेलनेस पे फोकस किया जाए। तो अभी हमारा जो नया विंग है वो उस पे काफी फोकस्ड है।
0: क्या बात है, बातों बातों में लिसनर्स एक इशारा हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बहुत सारी बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर रोशादा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं यानी कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें हम कर रहे होते हैं, और इसी संबंध में बात करने के लिए आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है आप हैं रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और आप ग्रेटर नोएडा में है। और इस वक्त बहुत सारी बातें जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, इनका जो एक एनजीओ है वो रन करती हैं होप बी लिट, जो कि एक सामाजिक सरोकार रखता है। और इस संबंध में जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑफ एयर कि ये लोगों के बीच में जाती हैं, उनके हक की बातें होती हैं, कहीं अंधेरा आए तो उसकी ज़िंदगी में उजाला लगाने का काम

0: करती हैं, उजाला लाने का काम करती हैं। तो जो एक विषय था, जो एक टॉपिक था, इशारा था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूही जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आपको लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मुझे बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? आपने ये भी मुझे बताया था कि इसके बारे में आपने एक कोर्स किया है और सीखने समझने के लिए आप बाहर भी गए। कितना समय आपको उस कोर्स में लगा और क्या आप महसूस करती हैं कि किस वजह से लोगों का स्वास्थ्य डिस्टर्ब है मेंटल हेल्थ के लिए?
1: तो हमारे मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उसमें 3-4 विंग्स हैं, और एक ओरल हेल्थ हमारा एक फोकस रहा है जिसमें कोलगेट, हेनरी शाइन जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़े हैं। मैंने देखा था कि ओरल हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है क्या बीमारी है। तो वो हमारी शुरुआत थी, और हम लोग लॉस एंजलिस स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज विद एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान जब हम मेंटल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हमने देखा कि कैंप्स में हम बाकी सर्विसेज फिजिकल फोकस दे रहे थे और मेंटल एपिडेमिक बहुत ही ऑब्वियस वे में, जो कि अभी आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। और एक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्ट होंगे कि जब आदमी स्क्रोल करता है तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस हैं वो कितने सेंसरी चेंजेस उसमें होते हैं, ये जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड। और वो सब मैं उसमें घुसी क्योंकि मैं जब काम कर रही थी गांव में या शहर में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो एज एन एपिडेमिक बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज फिजिकली तुम टच करके निकल सकते हो, लेकिन मेंटली बहुत चीजें फिजिकली आपको अल्टीमेटली यू नो इफेक्ट करती हैं। तो जड़ से उस चीज को उखाड़ने के लिए दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और सोशल मीडिया आजकल जो कि एक यू नो बून है, has also become a curse. It's a very thin line. तो वो थिन लाइन पे मुझे फिर जब फोकस हुआ तो मैंने कहा फिर मेंटल हेल्थ, ब्रेथ वर्क जैसे हमारे प्राणायाम है, मैं योगा टीचर रह चुकी, मैंने ऋषिकेश में किया हुआ है। लेकिन वो क्या होता है कि इंडिया में हम बहुत वास्ट, अब कौन सा बच्चा इतना लंबा प्राणायाम का कोर्स करेगा? बट एक सोमैटिक ब्रेथ वर्क, मैंने रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया है, तो जैसे बॉम्ब के बाद पैनिक होता है उसमें कितने सिंपल ब्रेथ टूल्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की जनरेशनल ट्रॉमा कैसे आती है। तो ये सब बेसिक चीजें जो कि 3-4 मिनट में आप एक दो चीजें छोड़ के जा सकते हो, मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसमें फिर मैंने 3-4 कोर्सेस किए।
0: सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिक्र हुआ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, और बात हुई योग के बारे में। सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। और जब योग का जिक्र हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और देखिएगा कि जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप रुपया कमाएं, आप ये भूल जाते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में कि आपकी सेहत आपसे दूर जा रही है, कोसों दूर जा रही है, और वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च होता है जब आप बीमार होते हैं। और ऐसे ही आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सो कहीं जाएगा मैं सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ और एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रही हैं रूही हक जी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस इनकी कंपनी है और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आर्मी बैकग्राउंड से भी आप आते हैं और खुद का एक एनजीओ है जिसका नाम है होप बी लिट। आप उसकी फाउंडर हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में आप जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एक बार फिर से रूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दुख को आप पहचानती हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करती हैं। मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं कि आप लोगों के बीच में रोशनी लाने का काम करती हैं और सच में आप रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आप लोगों के जहां लोग रहते हैं वहां अंधेरा है, वहां लाइट्स नहीं है, आप लाइट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं कि आप नो डाउट कि आप लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं जब आप लोगों से मिलती हैं धरातल पर ऑन ग्राउंड?
1: तो एक चीज मैंने देखी है कि क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो हम हर दो साल में नए शहर जाते थे, तो वो अडेप्टेबिलिटी बहुत आनी पड़ती है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। हर दो साल आप नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों की कल्चर और उनके अलग दुख और उनके अलग सुख वो सब देखना पड़ता है। तो इसी के साथ में बड़ी हुई और फिर कहीं भी जाना, किसी भी देश में जाना, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि सभी अपने हैं। यही सिखाया जाता है फौज में कि हम सभी एक देश के हैं और सभी अपने हैं। बट ये मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब से रोड में भी चलते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अगर हम अपने कम्युनिटी में ही देखें तो हमें बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक वही मैंने इग्नोर नहीं की और इसलिए मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जैसे मैं कनॉट प्लेस में थी और वहाँ मैंने ये जगह देखी जो कि एक इतनी लिट अप एरिया के बीच में है और इतने अमीर एरिया के बीच में, और वहाँ पे सवेरे जाने के लिए आपको अपने फोन के टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। और जब आदमी का दिमाग एक इतने उजाले से, वो भी यू नो मई की धूप में दिल्ली में एक अंधेरे गली में जाता है 12 बजे दोपहर को, वो भी एक जारिंग मेंटल एस्पेक्ट होता है। तो वो मैं इतनी बार गई वहाँ कैंप करने, मैंने वहाँ ओरल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, लेकिन ये लाइट मुझे हमेशा खटकती रही और मैं उनसे पूछती रही कि आपको क्यों नहीं खटक रही है। तो लोगों ने कहा कि हाँ आदत हो गई है, लेकिन ऐसी आदतें क्यों हम डालें। तो मैं सोच रही थी पहले कि गवर्नमेंट से बात करूं, क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को सोलर लाइट का आया, बिकॉज सस्टेनेबल एनर्जी वैसे भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसमें किसी को बिल नहीं आता है और धूप यहाँ बाकायदा रहती है। तो मैंने बहुत सारे पैनल्स और ये सब में हमने ट्रायल किए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को केबलिंग वगैरह का बहुत शौक है और इस कॉलोनी में इतने केबल्स हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा कि रूफ से वो केबल नीचे कैसे आएगा और किस लाइट से जुड़ेगा और उसकी कैपेसिटी किस कितनी मेगाहर्ट्ज की रहेगी। तो एज अ प्रोजेक्ट मैंने उसको उठाया और आज की डेट में हमने काफी स्ट्रीट्स को लाइट दे दी है। और मतलब मैं जब उन गलियों में जाती हूँ तो लोग आके बोलते हैं कि दीदी हम गिर जाते थे और आज हम खेल पाते हैं यहाँ पे, और अब मुझे सिक्योरिटी लग रही है और अब मैं कैमरा लगाने की सोच रही हूँ विद व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यही है कि आदमी अगर चाहे तो बहुत आसानी से अपने दोस्तों के बीच में ही ये कर सकता है। और मैंने अपने दोस्तों के साथ ही शुरू किया, मैंने इंतजार नहीं किया कि कोई बड़ी एनजीओ आएगी और कुछ काम करेगी। और ये हर इंसान कर सकता है, बस अपने दिल और दिमाग को खुला रख के देखे तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी।
0: बहुत खूबसूरत एक शेर है, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और कहते भी हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। मैं समझता हूँ कि ये जो पहल होती है वही एक टफ समय होता है, जहां एक शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पर 10 लोग आप महसूस करते होंगे कि 10 लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही कश्मकश में अगर इंसान रुक जाए, थम जाए, बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो सपना है वो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। और रूही जी ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि जब आप इन लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें परेशानियां इनके सामने और आती हैं, चूंकि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई एक ऐसा गाना जब आप बहुत परेशान रहती हैं, दिल को सुकून चाहती हैं, म्यूजिक के आसपास आप रहती हैं क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, तो एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ वही गाना हम आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए प्ले करेंगे।
1: मुझे तो बहुत पुराने गाने पसंद है,
0: चलेगा,
1: तो वो है ना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो मेरा बहुत फेवरेट।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो चलिए दोस्तों ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। आप एनजीओ रन करती हैं, आप उसकी कर्ता धर्ता हैं, यू कहें अंग्रेजी में तो फाउंडर हैं। एनजीओ का नाम है होप बी लिट और आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी कि एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लॉस एंजेलिस बेस्ड आपकी कंपनी है और कश्मीर से आप ताल्लुक रखती हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और वही जो खूबसूरती है वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकती है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना। आप है रूही हक जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या महसूस करती हैं जब आप धरातल पर जाती हैं, ऑन ग्राउंड जाती हैं, कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मानसिक अस्वस्थ हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो चाहे रुपयों की बात हो, चाहे वो एक लाइट का एग्जांपल हो जैसे आपने हमें खुद बताया, इसके अलावा पढ़ाई की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, घरेलू हिंसा है, तो किस तरीके से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं?
1: मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थेरेप्यूटिक टूल्स किए हुए हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा आई थिंक ईजी होते हैं टू मैनेज, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है आज की डेट में। तो वो टूल्स सिंपल एक राय होता है, जैसे मैं से अफगानिस्तानी वुमेन, या फिर अभी रेफ्यूजी कैंप्स में हम लोग जॉर्डन में थे मिडल ईस्ट में, तो वहाँ की औरतों के साथ अगर वो एक रॉर होता है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जो कि मतलब पीपल यू नो पीपल कैन गूगल, इससे इतनी यू फील सो इंडिपेंडेंट बिकॉज यू जस्ट स्पेंड टू मिनट्स डूइंग दैट लिटिल थिंग। तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और गूगल करके लोगों को मिल सकते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जब हम लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे खुद का मानसिक स्वास्थ्य, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, किसी का दुख देखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसको वो दुख हो रहा है, उसको वो तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं। तो दोनों जगह ये चीजें कायम रहती है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य पहले तो ठीक रखना पड़ता है, यू हैव टू रिमेन स्ट्रांग। जैसे मैंने रेप के ऊपर जब मूवी बनाई थी, लोगों ने कहा आपका रेप हुआ क्या? जब मैंने कैंसर के ऊपर बनाई तो बोला आपको कैंसर था क्या? तो वो ये ना कि तुमको नहीं होता है फिर भी वो फीलिंग
0: करना पड़ता है,
1: फील करना और करना चाहिए। हम इंसानियत तो वही है,
0: तभी काम कर पाएंगे,
1: तभी काम कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या लेवल है उसके पेन का, एंड यू कैन नेवर बी इन देयर शूज, उनका जो उनके साथ चल रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मेंटली अनस्टेबल है और बहुत ऑब्वियस चीज है। आजकल सटली सबके मानसिक में एंग्जाइटी और सोशल नर्वसनेस, आप देखिए कि इंटरनेट नहीं होने से क्या पागलपन होता है किसी घर में, जबकि खाना नहीं मिलने से वो पागलपन मैंने नहीं देखा है।
0: सही कह रहे हैं।
1: तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज का जो जेंजी और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो एडल्ट्स हैं वो उसको इतनी खुद वो व्हाट्सएप की दुनिया में खोए हुए हैं।
0: मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, इवन हम बड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, अगर बच्चा हमारा रो रहा है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो चुप हो जाता है और ये जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, आप और हम बैठे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे जरा सा भी गैप मिल रहा है, मैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं से कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं से कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, ये जो सोशल मीडिया का हम से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा कर रखें ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहे?
1: ये बहुत ही थिन लाइन है, बिकॉज हम खुद उन बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए भी वहीं जाओ जहाँ पे इनको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं। और इसलिए साइबर ट्रोलिंग, राइट, बिकॉज आपको इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए क्या कहा मेरे पोस्ट पर, ये कब रेलिवेंट हो गया इतना ज्यादा, ये कितनी जल्दी इतने सालों में पार हो गया, हमें पता भी नहीं चला, करेक्ट। और वो व्यूज सही भी हैं, गलत भी हैं, आजकल तो फेक भी हैं, और ट्रोलिंग फेक है, और अब AI आ गया है, तो AI बेस्ड हमने देखा है अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बिकॉज AI कैन डू एनीथिंग, इट कैन पुट यू वेयर यू वर नेवर देयर, और वो कितना डेंजरस है। और इसलिए हम लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन पुल दोज डाउन, जो चीज ऊपर जा सकती है इंटरनेट पे वो नीचे भी आ सकती है, ये वो एक्सटॉर्शन करने वाला भूल जाता है, लेकिन जो विक्टिम है वो ना भूले, वो एफर्ट है हमारी। अब
0: फाइनली अगर मैं इस रैप अप करूं इस प्रोग्राम को, फाइनली आपकी तरफ से अंत में क्या संदेश होगा, हमारे जो लिसनर्स हैं क्या कहना चाहती हैं और किन भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, तो बस आप अपनी बात रख सकते हैं।
1: डेफिनेटली हमारा इनफैक्ट होने वाला कुछ इवेंट्स हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ऑल्सो, और एक व्हाट नाउ फाउंडेशन करके है जो मुंबई बेस्ड है। डेफिनेटली प्लीज अपने यूथ को बोलिए कि दे लुक इट अप, एंड वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं, और

0: साइबर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सटॉर्ट हो रहा है तो वो चुप ना रहे, पेरेंट्स के साथ मिले, अपने शेयर करे, बिकॉज वो सबसे पहला डर होता है कि ये मैं नहीं थी लेकिन कौन कौन मेरा विश्वास करेगा, ये मैं नहीं था और कौन मेरा विश्वास करेगा. तो पहले वो उनके पास जाए, उनसे मिले, काउंसलिंग ले खुद की, और फिर यू नो पुलिस के पास जाए, और ये चीजें हटाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं. टेक्निकल टूल्स आर एज पावरफुल फॉर द इविल एज दे आर फॉर द गुड.
1: सो हाउ टू कनेक्ट
0: व्हाट नाउ और होप बिलेट, दोनों के सोशल मीडिया पे जाएं, वहां पे कुछ नंबर्स भी लोकल दिए गए हैं जो कि वो कॉल कर सकते हैं एंड सपोर्ट विल स्टार्ट राइट देयर.
1: ठीक है, सोशल मीडिया का कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर हो जो आप बताना चाहें जिसके जरिए,
0: तो होप बिलेट दे कैन गो ऑन होप बिलेट एट HOPEBLIT एंड दे कैन ऑल्सो गो ऑन एट WHTNOW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे. दे कैन रीच अस, मैसेज अस डायरेक्टली. मेरा खुद का अकाउंट है @RUHELZ जिसका नाम है रू हील्स. कोशिश जारी है हीलिंग की, खुद की भी और लोगों की भी. तो वहाँ पे जुड़े और मैसेज करें और उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा.
1: हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं, आप यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं, वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं. मेरी दिली दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ.
0: थैंक यू सो मच. आप गगन है तो हम रूह हैं.
1: हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे. तो मेरे साथ लिसनर जुड़ी रही रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजेलिस बेस आपकी कंपनी है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और होप बी लिट एनजीओ आप रन करती हैं, और बहुत अच्छा विषय जिस पर हमने बातें की, मेंटल हेल्थ के बारे में. ये विशेष कार्यक्रम, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM. मेरे यानी गगन के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा 90.8 एफएम। आपने को गीत सुना मेरा? सुना है जी।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।
4: हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
5: चले शहर घूमने।
4: चलो फिर।

0: हाँ जी मैडम, आया मजा? या और घूमना है?
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ और एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। 9:34 हो चुके हैं, 8 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अंग्रेजी में बोले तो हैव अ नाइस डे। फिलहाल हमारे आसपास क्या खास है, खास बात यह कि बारिश झमाझम हुई है, जिसकी वजह से मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है। और ऐसे मौसम में, हाँ ऐसे मौसम में बस वो याद आती है, मतलब समझा करो, दोस्त याद आती है, चाय की क्या बोलते हैं, टपरी याद आती है, हाँ चमोसे याद आते हैं, गड्ढे याद आते हैं, नाले याद आते हैं, सीवर याद आते हैं। मैं लिख डालूँगा इसके ऊपर कुछ ना कुछ, चलो बहादुर कुछ लिख डालेंगे। लेकिन सच बात तो ये कि ईश्वर अल्लाह मेघ दे, पानी दे, और कल झमाझम बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, और उसकी वजह से हमें ये भी कहना पड़ेगा कि हमारी जो कहते हैं ना आम भाषा में पोल खुल चुकी है, यानी कि सीवर के जो ढक्कन हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, नाले बहते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ओवरफ्लो है ना, जहाँ कूड़ा करकट नालों में जमा था, जिसकी वजह से नाले ओवरफ्लो हुए हैं, सड़क पर पानी जमा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे समय में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। फिलहाल ग्रेटर नोएडा में आज यानी कि 8 जुलाई को गरज के साथ आंधी पानी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कल हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे हालात है उसके बारे में जानेंगे जरूर, और बारिश के मौसम में क्या करें क्या ना करें उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आपको हमेशा अप टू डेट रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:43 हो चुके हैं। 8 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि दिल्ली एनसीआर में कल झमाझम बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम बड़ा खुशनुमा हो चुका है और ऐसे मौसम में दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि जाम की समस्या से दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये भी हैं कि जो सीवर का ढक्कन है वो खुला रहता है, वो ऐसे समय में नजर नहीं आता। दिक्कतें ये भी हैं कि नाले लबालब बह रहे हैं और जो कचरा है जो पानी है वो ऑन रोड आ रहा है। एक कल पिक्चर वायरल हुई जो हमने देखी कि फुटओवर ब्रिज के नीचे बाइकर्स खड़े हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए और वहीं से जाम खड़े होते हैं, वहीं से जाम का जाम शुरू हो जाता है। हाई हाई बिल्कुल सच बात है और वो जो पिक्चर थी बड़ी देखने वाली थी। मुझे लगता है कि वहां पर लोगों को खुद समझदारी दिखानी होगी, पुलिस वाले भाई साहब को वहां खड़ा होना होगा क्योंकि कई किलोमीटर जाम लगने से दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और खुदा नखास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऐसे समय में सुनने में आ रहा है कि गुरुग्राम में कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है और बहुत सारी बातें हैं कि ऐसे समय में क्या करें क्या ना करें ये भी आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि बारिश है। बारिश के मौसम में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे उसके बारे में जानेंगे जरूर कि किन किन खास बातों को आप ध्यान रखें तो आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे, अदरवाइज दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। घर से जब निकल रहे हैं तो समय से थोड़ा पहले निकलिए ताकि आपको ऑन रोड कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। अगर आपका खुद का व्हीकल है तो गाड़ियां स्लो चलाएगा बिकॉज क्योंकि ऑन रोड कुछ नजर नहीं आता क्योंकि ऑन रोड पर पानी भरा होता है और ऐसे समय में कहीं कहीं रोड्स धंसने की शिकायतें भी सामने आई हैं। तो सुरक्षित चलेंगे तो सुरक्षित घर सुरक्षित ऑफिस पहुंचेंगे और ऐसे समय में पेड़ भी गिरे हैं जिसकी वजह से जाम लगे हैं और आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। इस मौसम का लुत्फ उठाइए, अपना ख्याल रखें। मेरे बाबुला जवानी जाने मन का ब्यूटीफुल ट्रैक और इस गाने को आवाज दे रहे हैं हर्षदीप कौर अखिल, साथ ही साथ शैली का ये बोल और गौरव और रोशन का म्यूजिक सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: अगर यही फीलिंग बनी रहे, बची रहे, तो यकीन मानिए कि स्वर्ग वहां है। लेकिन इसके इतर विपरीत हम कुछ देखते हैं तो निश्चित तौर पर दिल बहुत दुखता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ उसका 57 मिनट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि प्यार आपके आसपास बेशुमार हो, नफरत का कहीं नामो निशान न हो, सुकून मिले, चैन हो, अमन हो। और कहा भी जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ते बढ़ते वक्त का इशारा जब होता है तो अनुमति ले लेने का समय आ ही जाता है। लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है कल के हिसाब से देखते हुए, और ऐसी बारिश की हमें दरकार है। सेहत का ध्यान रखिएगा, यानी कि खान पान का ध्यान रखिएगा और साफ पानी पीजिएगा। बाहर के खाने से अपने आप को बचा कर रखिएगा, मच्छरों से भी अपने आप को सुरक्षित रखिएगा।
1: ये क्या था?
0: ये नाना पाटेकर साहब का डायलॉग है कि एक मच्छर एक मच्छर मतलब इंसान को परेशान कर देता है। तो एक मच्छर से अपने आप को बचा कर रखिएगा, इम्यूनिटी को आप बढ़ा कर रखिएगा। यात्रा आपकी सफल हो, यानी कि जब आप ऑन रोड जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त कॉम्पैक्ट छाता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का रेनकोट आप ले सकते हैं। गैजेट्स को आप बचा कर रखें, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है और भी ज़रूरी कागजात हैं, उनको सुरक्षित रखेगा। वाटरप्रूफ बैग या पाउच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल भराव से अपने आप को दूर रखेगा, धीमी ड्राइविंग करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से इसको मैं दोहरा रहा हूँ कि धीमी ड्राइविंग करेगा ऑन रोड, क्योंकि पानी नज़र नहीं आता। पानी की वजह से पानी नज़र आता है लेकिन सड़कें नज़र नहीं आती। वहां हो सकता है कि गड्ढा हो या कुछ और दिक्कत परेशानी हो, तो ध्यान रखिएगा। और बिजली के खतरों से आप अपने आप को दूर रखिए। वाटर प्रूफिंग कराएगा अपने घर की, और इमरजेंसी किट यानी कि घर में कुछ दिनों के लिए साफ पानी, बिना पकाने वाला भोजन, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स, और मतलब ये एक सर्वे के दौरान ये बातें सामने, तो मुझे लगा कि ये मैं बातें आपके साथ शेयर कर दूं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9 to 11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। इस गाने को आवाज दे रही हैं प्रगति नागपाल।
1: हाँ, तीनों ठीक है इनके पास है,
0: मतलब
1: सिंगिंग का, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स का। गुड जॉब नागपाल जी, बधाई हो।
0: बधाई हो। आप चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आए हाय, आए क्या बात?

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान या चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिहतिया सिंह और टीकन देवी जी। तो सबसे पहले आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। मैं यानी कि सिहतिया सिंह की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मेरे श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सिहतिया जी, ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया होता क्या है?
1: देखिए शशि कपूर साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि ये जो विषय है हम सब ने बड़ा ही खास सब्जेक्ट चुना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ गई। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमेशा सुना जा सकता है, किसी एक खास दिवस का ये कार्यक्रम नहीं है, किसी खास उपलक्ष्य में कार्यक्रम नहीं है, ये बात है हमारे आपके हम सबके स्वास्थ्य की। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब घर की महिला स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। अब मैं विषय पर आता हूँ। सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं। ऐसे समय में आयरन और फॉलिक एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर ये जरूरत पूरी न हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या सिहतिया भैया, खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: देखिए सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। देखिए मैंने इसमें ऐड किया, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पर इसका फर्क पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में कहा जाता है जच्चा और बच्चा, दोनों पर इसका फर्क पड़ सकता है। दोस्तों अगर समय पर पहचान और इलाज न हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए मुफीद यानी कि लाभकारी होगा। दोस्तों
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है।
1: बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: वो कैसे?
1: बिल्कुल सही सवाल आपने किया भाई। जब मैंने इतनी गंभीर बात कर दी तो सवाल तो ये पैदा होता ही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है यानी कि उसका खान पान अच्छा नहीं है, पोषण वाला भोजन नहीं ले रही, उसको हम कह रहे हैं कुपोषित, और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे को भी पर्याप्त पोषण न मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है, और इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच, समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: तो दोस्तों ये बात सचमुच सोचने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो सिहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं, तो आप जरा बताइए इसके बारे में।
1: देखिए साहब, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा, तो ये केवल थकान नहीं हो सकती, ये आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे टीकन भाभी?
2: हाँ नमस्कार श्रोताओं।

0: मैं टिकन देवी एक बार फिर हाजिर हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे दोनों साथी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। दूसरी बार गर्भवती हुई थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी, घर वाले कहते थे कि गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई, वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात कभी पता ही नहीं चल पाती।
1: तो फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
0: हाँ बिल्कुल, रीना ने इलाज शुरू कराया। उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बेहद जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने की बजाय जांच कराना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इलाज तो तभी संभव होगा ना जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, जो कि बेहद जरूरी है।
1: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
2: देखिए साहब, गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
2: कई बातें देखी जाती हैं, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: तो सिहतिया भैया, अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
2: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों,
1: मतलब आपके कहने का ये है कि यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो सिहतिया भैया, इसके बाद अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये दोनों है क्या?
2: बिल्कुल, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
2: बिल्कुल सही पकड़े।
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
2: ये बात भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन पूरक आहार दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: तो टिकन देवी जी, किस तरह का भोजन?
0: जब आप भोजन की बात कर रहे हैं तो सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बेहद महत्वपूर्ण है। चना, दाल, राजमा, दूध, दही, अंडा, पनीर, स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल, आपको भोजन का ज्ञान होना भी जरूरी है। गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ उसे भोजन मिले।
1: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण कही टिकन जी आपने। सिहतिया भैया, आजकल एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है IVFCM, ये क्या है?
2: देखिए साहब, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता।
1: अच्छा,
2: मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा शशि कपूर साहब कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता। अब आपकी बात पर मैं आता हूँ। हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को ये लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
2: बिल्कुल। और भी सरल भाषा में कहें तो ये आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते, ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज या निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
2: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
0: हाँ, और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
0: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, भोजन में प्राथमिकता दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए, यही महिला के स्वास्थ्य को आगे लेकर जाएगा।
2: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4ANC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में सियतिया भैया और टीकन देवी जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया और IVFCM की भूमिका पर। और अब चलते चलते सियतिया भैया और टीकन देवी जी, अगर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
0: तो नमस्कार श्रोताओं, मैं टीकन देवी आपसे विदा लेती हूं और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत से मुद्दे पर हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी, और साथ ही साथ शशि कपूर साहब, टीकन देवी जी और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मैं अनुमति लेते वक्त दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सुना, बहुत अच्छा विषय हम लेकर आए अपने श्रोताओं के लिए। बस यही कहेंगे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और कहते हैं कि सेहत सही तो लाभ कई। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, आशा के साथ कि एक अच्छा विषय फिर से हम लेकर आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे, और खास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएं होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं, और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर बेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है, और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है बीमारी की, और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो, तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है, या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी न किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीजन हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी, तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में, अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीजन का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए। जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाय डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोज कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो, उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम, अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके

0: से फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए। लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीज़न में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीज़न में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
1: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
0: लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की। क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा 1 हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार ये हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले, माता हैं, वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर। और ये हम लाइव एग्जाम्पल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पे ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार ऑफिस बच्चे बहुत सारे रीज़न होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीज़न है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो वही डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो वही दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को जिस किसी को भी मानते हो तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर, और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर वीबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आज बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
7: महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टैंपून, महामारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
8: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
7: महामारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महामारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
8: महामारी कप, सैनिटरी पैड और टैंपोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
7: महामारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
8: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
7: महामारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
8: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
7: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
8: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
7: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
8: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
7: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
8: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जो खेती है वो आधुनिक तरीके से करें। परंपरागत तरीके से आप खेती करते हैं तो उसमें पैदावार कम होती है, लेकिन आज के जो आधुनिक तरीके हैं अगर उनका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं तो हम अच्छी खासी आमदनी खेती से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि केवल खेती पर ही आप निर्भर ना रहें, उसके साथ और भी काम करते रहें, जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, आपका जैविक खाद बनाने का प्लांट है, मधुमक्खी पालन है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस तरह से जब आप खेती करते हैं तो ज़रूर आपको खेती से

लाभ होता है। और पशुपालन तो हमारे हर किसान भाई को करना ही चाहिए, क्योंकि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जो पशु हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, चाहे हम दूध की बात करें, और उनका जो गोबर होता है वो तो इतनी अच्छी खाद उसकी बनती है कि उसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में जब हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भूसी बचती है, सब्जियां लेके आते हैं तो उसके अवशेष बचते हैं, जब कभी हमारे घरों में खाना ज्यादा बन जाता है, रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो उनको पशु खा लेते हैं। तो किसान मित्रों, ये जो तालमेल है खेती का और पशुपालन का, ये यूं ही चलते रहना चाहिए, तभी आप खेती से लाभ ले सकते हैं। और अब बात आती है किसान मित्रों कि जब आप खेती करते हैं तो बहुत सा समय आपके पास बचता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कहाँ पे करें। वैसे आप अपने खाली समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं, साथ ही जो हमारे घरों की महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो भी अपने खाली समय में इस धंधे को आराम से करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रख रखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर का बचा कुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है, और उसके बदले आपको मुर्गियों से उत्पाद प्राप्त होता रहता है। किसान मित्रों, मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ सफाई और हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना कम होती है। और किसान मित्रों, आपको याद ये रखना है कि शुरू से ही मुर्गियों में रोग निरोधक उपायों का अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है, क्योंकि संक्रामक रोग हो जाने पर मुर्गियों को बचाना कठिन होता है। मुर्गी के बीमार पड़ते ही उसे स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से अलग कर देना चाहिए और पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार मुर्गियों की देखभाल करे उसे स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिन्हें वो आसानी से धो सके या फेंक सके। हाथों को कीटाणुनाशक दवाओं से धो लेना चाहिए। जिस घर में बीमार मुर्गी रह चुकी हो उसमें नई मुर्गियां रखने से पहले चूना से पुताई करवा देनी चाहिए, साथ ही समय समय पर DDT आदि का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इस तरह से किसान मित्रों, आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मुर्गी पालन की, और अब आप सोच रहे होंगे अपने मनोरंजन की, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादन बढ़े और खेती में लागत कम आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है, और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है। तभी हमें पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। इसीलिए किसान मित्रों, आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खानपान होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी जांच से पता चल जाता है, और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी की जांच से पता चल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेतों से भरपूर पैदावार हो और आपकी खेती में जो लागत है वो कम आए, तो आप अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कहाँ पे करवाएं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं मिट्टी का सैंपल लेकर के, और वहां पर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उसके बाद फिर फसल के हिसाब से खाद का प्रबंधन करके अच्छी आमदनी खेती से ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि मिट्टी की जांच का कितना बड़ा महत्व है खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागिनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और लोकेंद्र सिंह। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं ये रागिनी।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और लोकेंद्र से ये रागनी, किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा दिया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी देखने में नहीं आया है और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी देखी जा सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाइयों द्वारा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है और हमारे खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैव उर्वरकों के उपयोग की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं महेश बपरौली और किस्सा रहेगा पृथ्वी सिंह किरणमयी का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: ये

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महेश बपरौली से ये रागनी, किस्सा था पृथ्वी सिंह किरणमयी का। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की

बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
4: Kaliya, aaj tere hukm ne, mujhe afraad kara diya. Mujhe to apne bete ki chita mein daag dena chahiye tha, lekin tene us had se bhi alag kar diya. Hai Parmatma, तू हमें क्यों सता रहा है? मेहरबानों, हरिश्चंद की इन बातों को सुनकर तो कालिया का दिल भी दहल गया। और कैसे,

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: ठान लो ये बात,
0: 5 खाद्य समूहों का मेल
1: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
0: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
1: बच्चा हो सकता है बीमार।
0: शिशु को 2 से 3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
1: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से। बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत। दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो अमेठी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंसा को नो। तो अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की भूमिका क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंसा किस परिस्थितियों में होती है महिलाओं के साथ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मारता है क्योंकि उसे बीवी द्वारा बनाया गया भोजन पसंद नहीं आया, खाने में कमियां निकालता है, उसे मारता पीटता है। एक महिला के साथ उसकी सास और पति द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता है क्योंकि वह दहेज नहीं लेकर आई। पति अपनी पत्नी को पीटने की धमकी देता है अगर वह उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती। पति अपनी पत्नी को बाहर जाने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे पुरुष उसको देखते हैं, उस पे शक करने लगता है, उसका फोन चेक करता है, बार बार हर जगह रोक टोक करने की कोशिश करता है। एक औरत का 4 बार गर्भपात हुआ है क्योंकि उसका परिवार बेटा चाहता है। एक साथ में रहने वाले जोड़े में पुरुष महिला को परेशान करता है। तो इन परिस्थितियों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की भूमिका क्या है। एकजुटता लाना। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा समाज में असमानता के कारण है। इस पर आवाज उठाने के लिए समुदाय में लगातार जागरूकता और एकजुटता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए और इसका काम आशा बहन कर सकती है। आशा बहनें अपना एक समूह बना सकती हैं और हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए समर्थन जुटा सकती हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जागरूक करना ये एक सबसे बड़ा काम है आशा बहन का। उन्हें एकजुट करना, उन्हें घरेलू हिंसा के बारे में बताना कि क्या है, किस प्रकार होती है। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी जो हमारे समाज में है, मान्यताएं। जैसे कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मुझे मारता है तो क्या हुआ। कोई भी औरत अपने साथी के बिना नहीं रह सकती, चाहे वह उसके साथ दुर्व्यवहार ही क्यों ना करता हो। बलात्कार की शिकार महिला की ही गलती होती है। क्या लड़की की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए क्योंकि फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न होने की संभावना नहीं रहती। समाज को इस सोच को बदल देना चाहिए, इन मान्यताओं को बदल देना चाहिए। आशा बहनें क्या कर सकती हैं? एक ग्रुप बना सकती हैं, एक समूह बना सकती हैं, महिलाओं के साथ बातचीत कर सकती हैं। महिलाएं क्या करें, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी बातें साझा करें एक दूसरे से ताकि उन्हें समझ आए कि सही क्या है, गलत क्या है। आशा बहनें उन्हें बताएं

कोई गंभीर हिंसा का मामला आ जाता है तो वो क्या कर सकती हैं, आइए इस बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आशा बहनें क्या करें कि उस महिला को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाएं, जहां पर हिंसा के कारण महिला के जीवन को खतरा ना हो, वो सुरक्षित महसूस करे। उनको तुरंत किसी परिवार के सदस्य या फिर समाज में कोई भी सदस्य है उनसे मदद लेनी चाहिए, उनसे सहायता लेनी चाहिए, ताकि वो वहाँ के जो लोग हैं वो महिला को हिंसा से बचा सके, उसकी मदद कर सके। आशा बहन का एक ये भी रोल है कि वो जिस महिला के साथ हिंसा हो रही है उनसे सवाल पूछें। हिंसा के बारे में सीधे सवाल करने से शायद उन्हें कोई जवाब ना मिले, सबसे पहले उनको विश्वास जीतना होगा उस महिला का जिस महिला के साथ हिंसा हो रही है। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। उनको ये जांचना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से महिला के साथ हिंसा की गई है, क्या उसके शरीर पर चोटें हैं या फिर उसको मानसिक आघात पहुंचाया गया है, उसको मानसिक रूप से परेशान किया गया है। यदि कोई गंभीर प्रभाव दिखाई देता है तो उसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए सही जगह भेजें, और अगर ज़रूरत हो तो उसे अपने साथ लेकर के जाएं, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। आशा बहन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आशा के रूप में वो एक उनके लिए सबसे पहली भरोसेमंद साथी हैं, क्योंकि महिलाएं अपने बारे में, अपनी हिंसा के बारे में उनसे शेयर करती हैं, उन्हें बताती हैं जो भी उनके साथ हुआ, ताकि वो आगे किसी को ना बताएं, जानकारियां गुप्त रखें, और आशा बहनें उसका सॉल्यूशन निकालें, उन्हें सही जगह पर भेजें, एक सही स्थान पर भेजें, सुरक्षित स्थान पर भेजें, चाहे वो किसी पारिवारिक सदस्य या फिर सामाजिक सदस्य की मदद ले सकती हैं इस बारे में। तो एक भरोसेमंद साथी का रोल भी प्ले करती हैं आशा बहनें, और जिन महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तो उनको बिना झिझके आशा बहनों के साथ सब कुछ बताना चाहिए जो भी उनके साथ हो रहा है, ताकि आशा बहनें फिर उनकी मदद कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं झिझकती हैं, हिचकिचाती हैं, बताती नहीं है जो भी उनके साथ हो रहा है। सबसे पहली बात तो समझने वाली होती है, उनको समझ में नहीं आता, वो मार को प्यार समझ बैठती हैं। तो जो भी उनके साथ हो रहा है घर में, उनके पति द्वारा, उनकी सास द्वारा, उनकी ननंद द्वारा, उनसे शेयर करना चाहिए आशा बहनों से, ताकि आशा बहनें भी उसका एक सॉल्यूशन निकाल सके। आशा बहनें महिलाओं को बताएं कि कैसे उन्हें हिंसा होने की संभावना के प्रति अलर्ट रहना है, और चाहे वो थाली पीट सकती हैं, अगर किसी महिला के साथ हिंसा हो रही है या होने वाली है तो वो एक थाली पीट सकती है, या पहले से उसे इन्फॉर्म कर सकती है, या फिर कोई भी ऐसा एक कोड वर्ड है वो लोग एक डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था, रोटी जल गई, मुझे खराब सपना आया, तीखी मिर्ची, कोई भी एक ऐसा वर्ड, या फिर अपनी बालकनी में साड़ी टांग देना, ताकि कैसे भी करके समझ आ जाए कि हाँ भाई इस प्रकार से उन, मतलब ये समझ आ जाए कि हाँ भाई अब हिंसा होने वाली है, और बाकी जो महिला मंडल हैं, जो आशा बहनें हैं, वो उस महिला की सहायता कर सके जिसके साथ हिंसा होने वाली है, और अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर भेजे। क्योंकि अगर कोई बच्चा हिंसा होते हुए देखता है तो उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। कभी कभार कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई पर से उनका ध्यान हट जाता है, और अगर वो अपने मम्मी पापा को ही ऐसा करते हुए देखेंगे तो फ्यूचर में अपनी पत्नी या फिर कोई भी उनके साथ होगा अपना पार्टनर, तो उसके साथ भी वो ऐसे ही हिंसा करेंगे। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ये आशा बहनों को बताना पड़ेगा, उन महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा इस बारे में। तो उनको एक काइंड ऑफ एक मीटिंग बिठानी चाहिए एवरी वीक, या कभी भी जब भी उनको समय मिले, शाम को चौपाल पे या कहीं पे भी, वो इस चीज़ के बारे में महिलाओं से डिस्कस कर सकती हैं, बातें साझा कर सकती हैं। और अगर कोई महिला घर छोड़ने का फैसला करती है

0: वो और हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकती है, एक सुरक्षित जगह पर ले मतलब जा सकती है, आशा बहन उसको लेके जा सकती है, जैसे कि चाहे वो उसका मायका हो, चाहे वो उसकी सहेली का घर हो, या फिर किसी संबंधी का घर हो, कोई रिलेटिव हो, जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस कर सके, तो आशा बहन उसको वहाँ लेके जा सकती है। सबसे पहले तो कोई महिला अपने पति पे डिपेंडेंट होती है वो ऐसा सोचती है, उसको अपनी स्किल्स के बारे में नहीं पता होता, तो सबसे पहले वो अपनी स्किल्स डेवलप करे और एक तो अपनी सोच को बदले कि हाँ घर छोड़ने के बाद भी उनकी एक लाइफ है, वो अपने बच्चे को पाल सकती हैं, और हिंसा बर्दाश्त करने से बेटर है कि आप एक सुरक्षित जगह पर जाएं और अपनी स्किल्स डेवलप करें, चाहे वो आप ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करें अपना, या फिर सिलाई बुनाई का काम शुरू करें, ताकि आप अपने बच्चे को पाल सके, किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहें और घर छोड़ने के बाद भी आपको अफसोस ना हो। तो महिलाएं क्या कर सकती हैं कि सबसे पहले तो ये सोचो कि हाँ आपको हिंसा बर्दाश्त नहीं करनी है, हिंसा बर्दाश्त करने के बाद आप घर छोड़ना चाहें तो आप घर भी छोड़ सकते हैं और अपना बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी पाल सकते हैं। और महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना होगा और आशा बहन को एक विश्वास दिलाना होगा उन महिलाओं को कि वो कुछ कर सकती हैं। उनके साथ बैठ के आशा बहन ने एक सॉल्यूशन निकाले कि घरेलू हिंसा से बचने के क्या उपाय हैं, उन्हें बताएं। और अगर कोई महिला ऐसा सोच रही है कि अगर उसे घर छोड़ना है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने साथ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, उनका और उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, संपत्तियाँ, अपने गहने साथ में लेकर जाएं, ताकि उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो उसको फेस कर सके। हिंसा करने वाले व्यक्ति का सामना करना आवश्यक होता है, इस बात को महिलाओं को समझना पड़ेगा। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही होती है, मारपीट हो रही होती है, या कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से आघात पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, भावनात्मक रूप से भी हिंसा होती है महिलाओं के ऊपर, उनके दिल को ठेस पहुंचाई जाती है, महिलाएं क्या करती हैं, चुप रह जाती हैं, किसी से शेयर नहीं करती। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास अगर आशा बहन हैं, आप उनसे अपनी बातें साझा करें और फिर क्या कहते हैं, आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं, और जो इंसान आपके साथ हिंसा कर रहा है उसे उसे नो कहें और उसका सामना करें, उससे छुपे नहीं और चुप्पी तोड़े आवाज़ उठाएं, हिंसा को कहें नो, ताकि ये जो बार बार हिंसा हो रही है इस पे रोक लगाई जा सके। आशा बहनों को कानूनी उपायों के बारे में भी बताना पड़ेगा उन महिलाओं को, उनसे साझा करना पड़ेगा कि महिला थाने हैं और पुलिस स्टेशन है जहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं, FIR दर्ज करवा सकती हैं, महिला मंडल हैं, उनसे वो मदद मांग सकती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सुमित्रा जी के पास और उनसे जानते हैं कि अगर कोई चुपचाप घरेलू हिंसा होते हुए देखता है, उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करता है, तो उसके संबंध में कानून क्या कहता है।
1: तो जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई चुपचाप किसी पर घरेलू हिंसा को होते हुए देखता है और कंप्लेंट नहीं करता, तो क्या इसके संबंध में कोई लॉ है? जी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इसके संबंध में कोई लॉ नहीं है। यू शुड रेज योर वॉइस। हिंसा को आप देखते हैं लेकिन आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। चलिए मैंने मान लिया आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप क्या आगे बढ़ के कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक समाज में रहते हैं और समाज की परिकल्पना, उसकी अवधारणा ये है कि ऑल ऑफ अस आर बेस्ड ऑन कलेक्टिविज्म। ह्यूमन बीइंग्स का जन्म ही इंटर रिलेटेडनेस के लिए हुआ है और हम लोग धीरे धीरे इस भौतिकवादी परिदृश्य में इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, कलेक्टिविज्म की तरफ नहीं। और जैसा कि हमारा शो भी है कि सोचो और समझो और चुप्पी को तोड़ो, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप किसी के ऊपर घरेलू हिंसा होते हुए देखते हैं तो आपको पांव आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और आपको वहां आगे बढ़कर इस चीज को समझना पड़ेगा और जितना हो सके मदद करनी पड़ेगी। आप नोट कीजिए हमारे अमेठी लॉ स्कूल नोएडा के लीगल अवेयरनेस और लिटरेसी कमेटी का नंबर 01204392807। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगी। और यहाँ पर यह कहना भी बहुत जरूरी होगा कि जैसा कि मेरे सीनियर कोलीग से बात भी हो रही थी, अभी मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी टिप्पणी दे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, और सभी लोग सम्मान के साथ जिएं, यही मेरी अवधारणा है। चलिए बात करते हैं मेरे सीनियर कोलीग डॉक्टर देवेंद्र सिंह से।
2: जैसा कि सुमित्रा सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही हिंसा देखकर उसे रिपोर्ट नहीं करना, किसी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट नहीं करना, कोई हेल्प नहीं दिलाना कि आपको सब कुछ देखते पता होते हुए और किसी कैजुअल्टी को आप बचा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने उसे देखते हुए भी उसे होने देते हैं। और जब तक लोग फोकल नहीं होंगे इस चीज़ को लिए, तब तक आप सोचें कि अवेयरनेस होगी इस सोसाइटी में, इंडिया हमारा ग्रो करेगा, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बी वोकल फॉर सच काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इफ़ यू सी दैट एनीवेयर। आपको हर हालत में उसे रेज करना होगा, उसके लिए वॉइस। आपके साथ हिंसा नहीं हो रही, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ हो रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट करना होगा ताकि उसे भी न्याय मिल सके, वो भी समाज, हमारी ही समाज का हिस्सा है।
1: यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जैसा भी देवेंद्र सर ने बताया, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप कहीं पर भी ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशनड है, एक कॉमन ब्रदरहुड और कमराडरी को जो बिल्ड करने का हम सभी का दायित्व है, आप लोग सब इसकी तरफ अग्रसर होंगे और कभी भी डरेंगे नहीं। 100 नंबर डायल कीजिए और पुलिस में आप कंप्लेंट जरूर कीजिए, और यहीं पर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को भी आप डायल कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो चला है, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
3: कहो हिंसा को।
4: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसी तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया, और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बढ़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत।
2: नमस्कार। तो आइए सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसी जी ने। और वो लिखते हैं,
4: नजारे नजर से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं।
2: तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं।
4: वाह क्या बात है, सच है श्रोताओ, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर विचार को भेजने के लिए
2: जी।
4: और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश
2: जी। गांव ढाड़ी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर और अनाया गुर्जर लिखते हैं।
4: आपने लिखा है, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक होता है जिसको हम नियमित रूप से सुनते हैं
2: जी।
4: आपने सर CV रमन के जीवन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताया, जानकर हमारी जानकारी में इजाफा हुआ
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है दिल्ली शहर से अस्मा परवीन,
4: बिहार से वसीम अकरम, शबनम और गुड़िया खातून,
2: पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी,
4: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं करते हैं शुरुआत पिछले सप्ताह के प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न था,
4: भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम और उसका अर्थ बताइए।
2: तो इसका उत्तर है, भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज।
4: हमारा दूसरा प्रश्न था, एक्टा डुरीना शब्द किस भाषा से आते हैं और इनका अर्थ क्या है।
2: इसका सही उत्तर है श्रोताओ, एक्टा डुरीना सन 131 ईसा पूर्व रोम से निकलने वाला समाचार पत्र था।
4: एक्टा डुरीना एक इतालवी शब्द है जिसका अर्थ है दिन भर की घटनाएं
2: जी।
4: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, बंगाल गजट किस भाषा में निकलता था और इसे किसने शुरू किया था।
2: तो सुनिए इसका सही उत्तर, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसके संपादक थे आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की।
4: और अब सुनते हैं हमारा आखिरी प्रश्न, भारतीय भाषा में निकलने वाले पहले समाचार पत्र का नाम, उसकी भाषा और संपादक का नाम बताइए।
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, भारतीय भाषा में निकलने वाले पहले समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी और ये बांग्ला भाषा में था।
4: और इस समाचार पत्र को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था
2: जी। तो अजीत जी, उमंग कार्यक्रम में हमने अब तक कहावतों, मुहावरों और भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं
4: जी,
2: दुनिया के देशों और महादेशों पर जानकारी प्राप्त की
4: जी। विमलेश जी
2: जी,
4: और साथ साथ हमने NCERT और उसके कई कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और हमने विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की
2: जी। अजीत जी, हमने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों के बारे में और समाचार पत्रों के बारे में भी बात की थी।
4: और तो और विमलेश जी, हमने एक बहुत ही रोचक श्रृंखला भी प्रसारित की थी, श्रृंखला का नाम आपको याद होगा, इनसे मिलिए
2: जी। बिल्कुल।
4: तो अब क्या इरादा है, क्या सुनाना है श्रोताओं को।
2: अजीत जी, मुझे लगता है कि इस सप्ताह हम नई श्रृंखला शुरू करेंगे और उसका शीर्षक होगा ये भी जानिए।
4: वाह, ये भी जानिए, इससे पहले हमने कहा था इनसे मिलिए, अब हम कहेंगे ये भी जानिए। बड़ा अच्छा शीर्षक है। तो इस श्रृंखला में हम क्या जानकारी देंगे।
2: अजीत जी, हम जानकारी देंगे दुनिया की महान विभूतियों के जीवन की उन घटनाओं की जिन्हें शायद कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम कब से कर रहे हैं शुरुआत।
2: अजीत जी, आज का प्रसारण तो प्रश्नों के उत्तरों में निकल गया
4: जी। बिल्कुल।
2: तो इसकी शुरुआत करेंगे हम कल से।
4: तो कल से, तो श्रोताओं कल तक के लिए कीजिए प्रतीक्षा, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए श्रृंखला ये भी जानिए
2: जी।
4: और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: दशराज्ञ युद्ध क्या था और ये किनके बीच लड़ा गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
4: दशराज्ञ युद्ध क्या था और यह किनके बीच लड़ा गया था। और भेज दीजिए उत्तर 8800440559 पर
2: जी।
4: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे ईमेल का पता है
2: audio@cit.nic.in।
4: तो आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, एक समय था जब टेलीविजन सबके लिए आश्चर्य का कारण था। रेडियो के आविष्कार के बाद ध्वनि का प्रसारण तो लोगों की समझ में आता था,
2: लेकिन दृश्यों का प्रसारण लोगों की कल्पना से परे था। आइए सुनते हैं टेलीविजन के आविष्कार की रोचक कहानी।
4: शीर्षक है, टेलीविजन की कहानी।
3: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह क्या शानदार मैच था, मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
5: जॉन मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की, कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था, काश मैं भी देख पाती।
3: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं, जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
5: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे, फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
3: मेरे मन में एक बात आ रही है।
5: वो क्या?
3: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
5: वाह क्या बात कही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
3: हाँ मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ, ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन,
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।
2: ओ।
1: फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी बंसी बात हो रहे। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, अब देखता हूँ कि क्या होता है।
1: विलियम।
2: हाँ जॉन।
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
2: करता हूँ।
1: हाँ, और सुनो।
2: हाँ।
1: आप कमरे में अंधेरा करो।
2: एक मिनट।
1: हाँ,
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
1: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
2: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
1: हाँ?
2: देखो सामने।
1: अरे हाँ,
2: क्या बात है।
1: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
2: हाँ जॉन।
1: हाँ,
2: हमें कामयाबी मिल गई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। दुनिया के इतिहास में संचार के माध्यमों में तीन माध्यम हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं,
2: और वे तीन माध्यम है रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा यानी चलचित्र। हम सब जानते हैं श्रोताओं कि सिनेमा शुरू में गूंगा यानी मूक था।
1: लोग सिनेमा में मात्र अभिनय करने वालों की भाव भंगिमा ही देख पाते थे, उनकी आवाज नहीं सुन पाते थे।
2: लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने उन्नति की और एक समय आया जब सिनेमा भी बोलने लगा।
1: तो आइए सुनते हैं विस्तार से मूक सिनेमा में क्या होता था और कैसे सिनेमा ने बोलना सीखा। कार्यक्रम का शीर्षक है
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।
3: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। चौदह मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
4: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
5: शोबोट।
4: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
6: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी।
4: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
7: उदा के नाम पे प्यारे।
4: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यू एम खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
7: अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत है।

0: आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
1: You see, as I told you, they are free.
2: Alan, you're safe. All of you.
3: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
0: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।
4: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
0: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
5: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
6: हाँ, देवी, जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी।
5: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
7: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
0: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
8: मैंने जिस मंत्र की साधना की, इसे ध्यान से

0: इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
1: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।
3: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं समाप्त होता है।
2: तो अजीत को
3: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत।
2: नमस्कार। तो आइए सुनते हैं आज का विचार जो हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसी जी ने। और वो लिखते हैं,
4: नजारे नजर से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज नहीं।
2: तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं।
3: वाह, क्या बात है। सच है श्रोताओं, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर विचार को भेजने के लिए
2: जी।
3: और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश
2: जी। गांव ढाड़ी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर और अनाया गुर्जर लिखते हैं।
3: आपने लिखा है, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक होता है, जिसको हम नियमित रूप से सुनते हैं
2: जी।
3: आपने सर सीवी रमन के जीवन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताया, जानकर हमारी जानकारी में इजाफा हुआ
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है दिल्ली शहर से अस्मा परवीन,
3: बिहार से वसीम अकरम, शबनम और गुड़िया खातून,
2: पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी,
3: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत पिछले सप्ताह के प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न था,
3: भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम और उसका अर्थ बताइए।
2: तो इसका उत्तर है, भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, एक्टा डुरीना शब्द किस भाषा से आते हैं और इनका अर्थ क्या है।
2: इसका सही उत्तर है श्रोताओ, एक्टा डुरीना सन 131 ईसा पूर्व रोम से निकलने वाला समाचार पत्र था।
3: एक्टा डुरीना एक इतालवी शब्द है जिसका अर्थ है दिन भर की घटनाएं
2: जी।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, बंगाल गजट किस भाषा में निकलता था और इसे किसने शुरू किया था।
2: तो सुनिए इसका सही उत्तर, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसके संपादक थे आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की।
3: और अब सुनते हैं हमारा आखिरी प्रश्न, भारतीय भाषा में निकलने वाले पहले समाचार पत्र का नाम, उसकी भाषा और संपादक का नाम बताइए।
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, भारतीय भाषा में निकलने वाले पहले समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी और ये बांग्ला भाषा में था।
3: और इस समाचार पत्र को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था
2: जी। तो अजी जी, उमंग कार्यक्रम में हमने अब तक कहावतों, मुहावरों और भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं
3: जी,
2: दुनिया के देशों और महादेशों पर जानकारी प्राप्त की
3: जी। विमलेश जी
2: जी,
3: और साथ साथ हमने NCERT और उसके कई कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और हमने विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की
2: जी। अजी जी, हमने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों के बारे में और समाचार पत्रों के बारे में भी बात की थी।
3: और तो और विमलेश जी, हमने एक बहुत ही रोचक श्रृंखला भी प्रसारित की थी, श्रृंखला का नाम आपको याद होगा, इनसे मिलिए
2: जी। बिल्कुल।
3: तो अब क्या इरादा है, क्या सुनाना है श्रोताओं को।
2: अजीत जी, मुझे लगता है कि इस सप्ताह हम नई श्रृंखला शुरू करेंगे और उसका शीर्षक होगा ये भी जानिए।
3: वाह, ये भी जानिए। इससे पहले हमने कहा था इनसे मिलिए, अब हम कहेंगे ये भी जानिए। बड़ा अच्छा शीर्षक है। तो इस श्रृंखला में हम क्या जानकारी देंगे
2: अजीत जी। हम जानकारी देंगे दुनिया की महान विभूतियों के जीवन की उन घटनाओं की जिन्हें शायद कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम कब से कर रहे हैं शुरुआत
2: अजीत जी, आज का प्रसारण तो प्रश्नों के उत्तरों में निकल गया
3: जी। बिल्कुल।
2: तो इसकी शुरुआत करेंगे हम कल से।
3: तो कल से, तो श्रोताओं कल तक के लिए कीजिए प्रतीक्षा, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए श्रृंखला ये भी जानिए
2: जी।
3: और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: दशराज्ञ युद्ध क्या था और ये किन के बीच लड़ा गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
3: दशराज्ञ युद्ध क्या था और यह किन के बीच लड़ा गया था। और भेज दीजिए उत्तर 8800440559 पर
2: जी।
3: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे ईमेल का पता है
2: audio@cit.nic.in।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, एक समय था जब टेलीविजन सबके लिए आश्चर्य का कारण था। रेडियो के आविष्कार के बाद ध्वनि का प्रसारण तो लोगों की समझ में आता था,
2: लेकिन दृश्यों का प्रसारण लोगों की कल्पना से परे था। आइए सुनते हैं टेलीविजन के आविष्कार की रोचक कहानी।
3: शीर्षक है टेलीविजन की कहानी।
0: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
5: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
0: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
5: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
0: मेरे मन में एक बात आ रही है।
5: वो क्या?
0: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
5: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
0: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।
2: ओह।
1: फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ, और सुनो।
1: हाँ।
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ।
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
0: हाँ?
1: देखो सामने।
0: अरे हाँ,
2: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
2: हाँ जॉन।
0: हाँ।
2: हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
2: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम, बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: वाओ, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। दुनिया के इतिहास में संचार के माध्यमों में तीन माध्यम हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं,
2: और वे तीन माध्यम है रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा यानी चलचित्र। हम सब जानते हैं श्रोताओं कि सिनेमा शुरू में गूंगा यानी मूक था।
1: लोग सिनेमा में मात्र अभिनय करने वालों की भाव भंगिमा ही देख पाते थे, उनकी आवाज नहीं सुन पाते थे।
2: लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने उन्नति की और एक समय आया जब सिनेमा भी बोलने लगा।
1: तो आइए सुनते हैं विस्तार से मूक सिनेमा में क्या होता था और कैसे सिनेमा ने बोलना सीखा। कार्यक्रम का शीर्षक है
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।
3: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। चौदह मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
4: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
5: शोबोट।
4: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
6: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी।
4: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
7: खुदा के नाम पे प्यारे।
4: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
7: मांग ले मुझसे हिम्मत है।

0: आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
1: You see, as I told you, they are free.
2: Alan, you're safe. All of you.
3: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
0: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।
4: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
0: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
5: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
6: हाँ, देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी,
5: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
7: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
0: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
8: मैंने जिस मंत्र की साधना की, इसे ध्यान से

0: इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
1: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।
3: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं समाप्त होता है।
2: तो अजीत को
3: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी महासागर वातावरण का आपसी तालमेल और जीवन। पिछली कड़ी में आपने सुना सूरज की ऊर्जा ने धरती पर जीवन संजोने में एक अहम भूमिका निभाई है, पर इस निरंतर चलते जीवन को धरती पर मौजूद महासागरों एवं वातावरण ने भी अपनी प्यार भरी थपकियां दी। तो आइए सुनते हैं महासागर वातावरण का आपसी तालमेल।

0: तारे जमीन, अरे हमारे तारे कहाँ गए? वसुधा
1: जी,
0: अरे ये मानव और सृष्टि उठे कि नहीं अभी तक, और विवेक स्टेशन पहुंचा कि नहीं?
1: देखती हूँ। मानव सृष्टि, मानव उठो, चलो उठो सृष्टि।
2: क्या मम्मी, संडे के दिन तो सोने दो।
3: हाँ मम्मा, पापा भी कितनी जोर से चिल्लाते हैं।
1: अरे चिल्लाएंगे नहीं बेवकूफों, सूरज आसमान पर चढ़ गया और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। चलो उठो, ब्रश वगैरह करो, उठो अब।
3: अरे मम्मी, ये विवेक भैया कहाँ गए?
1: अरे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोनों के दोस्त डॉक्टर ब्रजमोहन और उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना और उनके एक और सहपाठी डॉक्टर शमसुल इस्लाम आ रहे हैं आज।
4: डॉक्टर शमसुल इस्लाम?
1: हाँ।
4: यानी कि इस्लाम अंकल? जो मुझे बहुत डांटते थे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर?
1: मानव ऐसे नहीं बोलते बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे और इस्लाम भाई साहब को बहुत तंग करते थे, अब तो तुम काफी शरीफ हो गए हो ना।
3: ये और शरीफ? अरे मम्मी, इस्लाम अंकल पहले तो सिर्फ डांटते थे, अब तो ये शरीफ मानव पिटने के लायक है।
4: पिटने के लायक है? पर मम्मी, ये सब यहाँ पर आ क्यों रहे हैं?
0: मानव मानव और सृष्टि फटाफट तैयार हो जाओ। अरे भाई, ये तीनों हमारे देश के जाने माने समुद्र और मौसम विज्ञानी हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो 3 बार एंटार्क्टिका जा चुके हैं।
4: बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं?
1: चुप मानव, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत पिटाई होगी।
4: लेकिन
1: घर पर मेहमान आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना बेटा, बार बार एक ही रट लगा रखी है, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अब चुपचाप जाकर नहाओ, चलो।
3: वाह वाह मम्मी, मानव की सुबह का डांट से श्री गणेश।
0: अरे मानव बेटा, दिल्ली में डॉक्टर ब्रज, डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर इस्लाम का समुद्र और वातावरण विषय पर लेक्चर है। अब सभागार यहाँ से पास है तो मैंने गेस्ट हाउस में रुकने को मना कर दिया। अब ये तीनों हमारे साथ करीब 1 हफ्ता रहेंगे।
4: इस्लाम अंकल भी 1 हफ्ता रहेंगे?
3: और क्या, और पूरे 1 हफ्ते तुझे डांट पड़ने वाली है।
4: तुम तो यही चाहते हो कि मुझे डांट पड़े।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पिछली बार जब डॉक्टर इस्लाम आए थे तो एक तो तुम सिर्फ 4 साल के थे और बेचारा शमसुल भी अपने अंटार्कटिका मिशन को लेकर कुछ परेशान था।
3: अरे पापा, इस मानव ने इस्लाम अंकल के सारे कागज और चिट्ठियों पर भी तो रंगों से ड्राइंग बना डाली थी।
0: तभी तो डांटा था इस्लाम ने। बेचारा मानव डॉक्टर इस्लाम के शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाकर उसे ही दिखाने चला गया था।
4: मुझे डांट पड़ी और आप सब हंस रहे हो।
1: अरे मानव क्यों दुखी होता है रे, तेरे इस्लाम अंकल तुम सबको इतना प्यार भी तो करते है ना।
0: एग्जैक्टली,
1: तेरे लिए डांट के बाद खिलौने भी तो लाए थे, याद है ना?
3: और वो भी इसने उनके सामने ही बराबर कर डाले थे।
0: वैसे मेरे ये तीनों दोस्त तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो खुद ही हमारे यहाँ रुकना चाह रहे थे और तुम्हारे बारे में तो वो पूछ भी रहे थे मानव।
4: बाप रे, अगर उन्हें मैं अभी तक याद हूँ तो मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता हूँ।
1: जल्दी जाओ। चलो, इस्लाम भाई साहब के डर से संडे को सुबह सुबह नहाने तो गया मानव।
0: सही बात है, उनको यही रोक के रखना
1: पड़ेगा। बिल्कुल।
0: लो, अब लगता है आ गए। मानव मानव, जरा दरवाजा तो खोलना।
1: अरे आप भी किसे आवाज लगा रहे हैं? मानव बेचारा तो इस्लाम भाई साहब के डर से पहले ही अपने कमरे में चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया है।
0: अच्छा ठीक है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अरे आओ आओ ब्रज, इस्लाम अल्पना, कैसे हो तुम सब? बिल्कुल ठीक।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक।
5: भाई बहुत वर्षों बाद मिलना हो रहा है। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार भाई साहब।
5: ये मेरी पत्नी और सहयोगी डॉक्टर अल्पना है।
1: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई इस्लाम, और बताओ कैसा चल रहा
6: है? हम तो ठीक है, आप सुनाओ क्या?
0: सब खैर।
6: भैया तुम्हारा विवेक भैया तो बहुत समझदार है ना, तौर पे मांग रहा था, सीधे 40 करा दिए।

0: मानव मानव देखो इस्लाम अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।
1: अब ना आए
2: अंकल। अंकल मानव आपकी 5 साल पहले की डांट अभी तक नहीं भूला।
3: बिल्कुल सही है। चलो तुम्हें मैं ही बुला लेता हूँ। मानव अरे भाई मानव कहाँ हो?
1: लो आ गया मानव।
4: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते आंटी।
0: नमस्ते बेटा।
3: भाई मानव बहुत बड़ा हो गया। अरे इधर आओ।
4: जी अंकल।
3: क्यों बच्चे कैसे हो?
4: मैं ठीक हूँ।
3: हाँ भाई तो कौन से क्लास में आ गए?
4: मैं 4th class में।
0: अरे वाह मानव तो वाकई बड़ा हो गया।
5: अंकल आपका लेक्चर समुद्र और वातावरण विषय पर है ना?
6: हाँ विवेक मैं और अल्पना वातावरण पर बोलेंगे और डॉक्टर इस्लाम महासागरों और समुद्रों तथा वातावरण के आपसी तालमेल पर बताएंगे।
4: अंकल महासागर और वातावरण का आपस में क्या तालमेल है?
3: अरे वाह मानव लगता है हमारा लेक्चर तो अभी से शुरू क्यों ही?
0: बेटा पहले नाश्ता कर ले फिर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे। हाँ, ठीक है
5: जी। चाय दे।
6: और हाँ जब तक हम हैं तब तक मानव को रोज कम से कम 4 सवाल जरूर पूछने होंगे। ठीक है मानव?
4: जी अंकल।
3: भाई चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो तब तक मानव तुम कुछ सवाल सोचते रहो। क्यों मानव?
4: जी।
7: थोड़ा शुगर पास करना है।
4: हाँ अंकल आप बता रहे थे कि महासागर सागर वातावरण और भूमि का आपसी तालमेल है।
3: हाँ बेटे सृष्टि चलो मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि धरती की 3 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं?
4: प्रणालियाँ क्या मतलब अंकल?
6: बेटे मानव हमारा प्रणाली से मतलब है वो मुख्य तंत्र या सिस्टम जो इस धरती पर जीवन बनाने तथा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
4: ब्रजांकल जीवन के लिए आवश्यक है हवा पानी और खाना यानी भोजन है ना?
8: बिल्कुल ठीक कहा दीदी। इन तीनों के बिना खास करके भोजन के बिना तो जीवन होगा ही नहीं।
0: सृष्टि बेटे तुमने एक आम व्यक्ति के रूप में बिल्कुल ठीक कहा पर अगर हम वैज्ञानिक रूप से धरती के बदलते मौसम जलवायु पेड़ पौधे पर्यावरण तापमान आदि का एक भौतिक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा और बड़े और व्यापक स्तर पर जाते हैं।
5: आंटी मेरे हिसाब से धरती के 3 मुख्य तंत्र होंगे भूमि महासागर और वातावरण।
3: वेरी गुड बिल्कुल सही। देखो सृष्टि और मानव जो तुमने कहा वो भी ठीक था पर विवेक ने इसे एक बड़ी प्रणाली समझते हुए हवा को वातावरण पानी को महासागर तथा आवास एवं खाने को भूमि का हिस्सा बना दिया।
0: विवेक तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। हालांकि आवास एवं भोजन हमें पानी में भी उपलब्ध है इसलिए भूमि की यहाँ एक नई भूमिका हो जाती है।
4: कैसी भूमिका आंटी?
6: समझाते हैं पर मानव अपने सवाल भी सोचते रहना अच्छा?
4: जी।
3: देखो जैसा विवेक और डॉक्टर अल्पना ने बताया भूमि महासागर तथा समुद्र इसी धरती के 3 मुख्य तंत्र हैं और इन्हीं तंत्रों का आपसी तालमेल हमें नए नए मौसम खाद्य पदार्थ तथा जीवन देता है।
6: यानी हम पूरी धरती को अलग अलग तंत्रों की एक ऐसी अनूठी प्रणाली के रूप में देखते हैं जहाँ सारे भौतिक पैमाने मिलकर हमारी इस धरती को अद्भुत एवं जीवन भरा ग्रह बनाते हैं।
0: यानी सभी तंत्रों की परस्पर क्रिया चलती रहती है जिससे हवा आंधी बारिश तूफान चक्रवात आदि आते हैं।
4: वो कैसे आंटी?
3: तो मानव
4: जी
3: पहले तुम 3 तंत्रों को अलग अलग रूप में समझ लो फिर तुम्हें इनका आपसी संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव अपनी स्कूल की कोई पुस्तक या कॉपी ले आओ जरा।
4: वो क्यों अंकल?
3: अरे भाई तुमने मेरे सारे शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाई थी अब मैं तुम्हारी पुस्तक पर ड्राइंग बनाकर उनको जरा थोड़ा सा रंग दो। क्यों?
4: मम्मी
0: अरे नहीं बेटा क्या इस्लाम भाई साहब आप भी ना बेचारा मानव इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जोड़ पा रहा है और आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं।
3: ये बात है। अच्छा तो मानव चलो किताब रहने दो चलो अब ध्यान से समझो कुछ पल लेना पड़े तो बता जरूर देना।
4: जी।
0: हाँ भाई पिछले कुछ दशकों में धरती की प्रणालियों की जटिलता का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वातावरण महासागर भूमि और यहाँ तक सभी जीव जंतु

0: जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, सभी आपस में एक नाजुक तार से बंधे हुए हैं और किसी भी एक भाग की गतिविधि हर एक तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
1: हैं? नाजुक तार से बंधे हुए हैं? कौन सा तार? मैंने तो कोई तार नहीं देखा।
2: अरे भाई मानव, यही तो ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस सब करते हैं।
1: वो कैसे अंकल?
3: अब देख मानव, अब मैं पापा के स्कूटर पर रोज तुझे घुमाता हूँ, तुझे तो बड़ा मजा आता है ना?
1: हाँ भैया,
3: पर जो तुझे आजकल ज्यादा गर्मी लगती है उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूटर की भी भूमिका है।
1: स्कूटर का गर्मी से क्या लेना?
0: लेना कैसे नहीं मानव, स्कूटर, कार, बस, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं।
4: देखा मानव, विवेक भैया के साथ तेरा स्कूटर पर लगाया गया फालतू चक्कर कैसे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
5: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। तो मानव, यही है वो अदृश्य धागा जिससे हम सब बंधे हैं और हमारी जरा सी गड़बड़ी पूरे जीवन की डोर को ही तोड़ सकती है। अब समझ में कुछ आया मानव?
1: थोड़ा थोड़ा पापा,
5: थोड़ा।
2: चलो तुम्हें विस्तार से समझाते हैं। पहले वातावरण से शुरू करते हैं। अब मानव, जैसे तुम सागर से बहुत दूर यहाँ दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि सागर या महासागर की तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, है ना?
0: हाँ, पर बच्चों ऐसा नहीं है। महासागरों और वातावरण का एक साथ एक एकल तंत्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये एक समान पारस्परिक क्रिया तथा अदला बदली से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
2: हाँ बच्चों, दोनों ही महासागर और वातावरण अपने में होने वाली गतिशीलता के लिए ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, समझे? हाँ।
6: और ताप या गर्मी में भिन्नता के कारण ही सघनता या दाब में भिन्नता आती है, और ये भिन्नता या फर्क ही हवा तथा महासागर प्रवाह का आधार होते हैं।
3: अंकल, ये महासागर सूरज से आने वाले ताप या ऊष्मा के भंडारण का भी तो काम करते हैं ना?
6: हाँ विवेक, और देखो असल में महासागर जमीन की तुलना में ज्यादा गहराई तक गर्म हो जाते हैं।
0: हाँ, और जब ठंडी हवा इस गर्म पानी के संपर्क में आती है तो ये अपनी गर्मी या ऊष्मा वातावरण में छोड़ देते हैं। जो हवा महासागरों की सतह पर बहती है वो लहरें पैदा करती है, और इस दौरान ये हवा जल वाष्प के साथ साथ पानी के तापमान के गुण भी अपने में समा लेती है।
5: हाँ तो भाई मानव, कुछ समझ आया?
1: शायद
2: है? भाई ये क्या जवाब हुआ?
6: अरे भाई, लगता है मानव को सब धीरे धीरे समझाना पड़ेगा।
0: अच्छा तो मानव, जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत वातावरण से करते हैं।
1: जी,
0: वातावरण असल में गैसों का आवरण होता है जो पूरी धरती को अपने में समेटे हुए है।
2: हाँ, जब सूरज से आने वाली किरणें हमारी धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो कुछ तो बादल और धूल के कारण वापस ऊपर की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं, और कुछ भू सतह की ओर बढ़ती हैं।
0: अच्छा, अब जो किरणें जमीन की सतह की ओर बढ़ रही हैं, वो जब सतह से टकराती हैं, तो कुछ विकिरण तो धरती सोख लेती है और कुछ विकिरण बर्फ, पानी तथा अन्य परावर्ती सतहों से टकराकर वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती हैं।
1: अच्छा,
0: और धरती से टकराकर ये इंफ्रारेड विकिरण में बदल जाती है, यानी धरती भी ऊष्मा लौटाती है।
6: अब हमारे वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो अपने खास गुणों के कारण बाहर निकलने वाली लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड विकिरण को बचकर नहीं जाने देती और उनकी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस कारण ये वापस धरती से टकराती हैं और सतह के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं।
2: ये घटना धरती के समूचे इतिहास में होती रही है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, समझे?
1: जी।
2: बगैर वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के यह धरती बर्फ से जम जाएगी और यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, समझे?
1: समझ गया अंकल। हाँ। पर अब मुझे ना खेलने जाना चाहिए।
2: अरे अभी से? मानव, अभी कहाँ चले? अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना है।
1: पर वो...
6: और बेटे मानव, तुमने चार सवाल भी तो नहीं पूछे।
1: जी, वो बेचारा मानव फंस गया। अंकल, आपने सारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि कोई सवाल पूछने के लिए ही नहीं है।
2: वाह क्या बात है। आ मानव भाई हमने समझाया कहाँ है, अभी तो समझाना है भाई।
5: वैसे मानव बेटा
1: जी,
5: जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब सवाल पूछने का अवसर मिलता है और उनके जवाब जानने का भी, इसलिए भाई मेरा मानना है कि ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल।
5: और इसलिए अभी बैठ जाओ, खेलना बाद में, ठीक है?
1: ठीक है पापा। अच्छा अंकल, समुद्र में गति को मापने की इकाई को नॉट क्यों कहते हैं?
6: अरे वाह मानव बेटे, तुम्हारे पास तो बड़े रोचक सवाल हैं।
1: जी
6: भाभी, मानव के इसी सवाल पर एक एक चाय हो जाए।
4: अरे आप बिल्कुल भाई साहब, आपने कहा और अभी लेकर आती हूँ।
3: पेट में नॉट पड़ रही है,
2: नॉट पड़ रही है।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारे इस रोचक सवाल कि समुद्र में गति मापने की इकाई नॉट क्यों है का जवाब अब ध्यान से सुनो। भाई पुराने समय में नाविकों द्वारा गति नापने की विधि से ये नाम पड़ा है।
1: अच्छा।
6: असल में पुराने समय में नाविक एक रस्सी जिसके हर 14.4 मीटर पर एक गांठ बंधी होती थी, उस एक सिरे को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में फेंक देते थे।
2: अब ये लकड़ी का लट्ठा अपने साथ रस्सी को खींचता है। अब हर 28 सेकंड में कितनी गांठें लट्ठे ने खींची हैं, इससे नाविक जहाज की गति का पता लगाते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया।
0: आज एक नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है, समझे?
1: जी आंटी।
5: अरे मानव, तुम बेकार में अपने इस्लाम अंकल से डरते हो, देखो वो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
1: हाँ पापा।
2: मानव ज्यादा खुश मत होना, सारी बातें खत्म करके मुझे तुम्हारी सब किताबों में अभी ड्राइंग भी बनानी है।
4: मम्मी क्यों तंग करते भाई साहब बच्चे को, लीजिए चाय लीजिए,
3: लो भाई लो,
4: लीजिए भाभी जी।
3: हाँ थोड़ी ब्रश तुम भी लो ना।
2: जी क्या बात है।
3: एक सवाल था, वातावरण की गैसों से आने वाली ऊर्जा और ऊर्जा छोड़ने के बीच में संतुलन बन पाता है, ठीक अंकल? पर वातावरण में कौन कौन सी गैसों का स्तर है?
2: हाँ तो विवेक, अब अगर शुष्क हवा में देखें तो मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 79% है।
3: अच्छा।
2: ऑक्सीजन 20%
3: और
2: आर्गन करीब 1% के आसपास है।
3: अच्छा।
2: जबकि वाष्प जो भिन्न भिन्न मात्रा में वातावरण में मौजूद है, एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, समझे?
0: और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में मौजूद होती हैं, जिन्हें पार्ट्स पर बिलियन यानी PPB में मापते हैं।
1: अल्पना आंटी, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हुआ 1/1,000,000,000। इतनी छोटी मात्रा में इन गैसों का क्या फायदा या नुकसान?
6: नहीं सृष्टि बेटे, ऐसा नहीं है। हा? एक सूक्ष्म गैस जिस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
2: इस कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में स्तर 0.034% के लगभग है और इतनी सी मात्रा में ये अच्छी खासी गर्मी पैदा करने में सक्षम है, जानते हो?
4: मिसेस मल्होत्रा आइए।
1: ओह जी।
4: भाई साहब ये हमारी पड़ोसन है मिसेस मल्होत्रा।
7: ओ जी नमस्कार।
5: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए मिसेस मल्होत्रा, कैसे आना हुआ आपका?
7: ओ जी वो अपना मानव आज हैप्पी के साथ खेलने नहीं आया, इसलिए देखने आई थी, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है जी?
1: हाँ आंटी, मानव की तबीयत तो वाकई इस समय बहुत खराब है।
4: नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं, असल में ये मानव के पापा के दोस्त डॉक्टर इस्लाम, ये हैं डॉक्टर ब्रजमोहन और आप उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना जी हैं। ये मानव को वातावरण और महासागरों के बारे में कुछ समझा रहे थे इसीलिए।
7: ओ जी आप डॉक्टर हो तो बीमारी शिमारी की बातें करो ना जी, ये समुद्र से हमारा क्या लेना देना, और वातावरण तो पहले ही खराब है ना जी।
5: और नहीं नहीं परजाही जी, असल में ये बीमारी वाले डॉक्टर नहीं बल्कि समुद्र और वातावरण पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। आखिर आप बैठिए ना हमारे साथ, चाय पीजिए, आइए बैठिए।
7: जी भाई साहब जरूर बैठूंगी, पर वसुधा जरा चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डालो।
5: अच्छा, मुझे लगा था चीनी कम डालनी है।
8: दुनिया का कम पे जोर है, आप ज्यादा कहती है तो ज्यादा चीनी वाली चाय लाती हो।
4: हाँ तो अंकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा आजकल मीथेन गैस के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, है ना?
2: हाँ सृष्टि बेटे, बिल्कुल ठीक कहा। मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ती मानव आबादी है।
7: ओ जी डॉक्टर साहब, बढ़ती मानव आबादी पर अपनी कॉलोनी में तो एक ही मानव है और वो है ये हमारा मानव पुत्र।
6: नहीं नहीं मिसेज मल्होत्रा जी, असल में इस्लाम का मतलब पूरी मानव सभ्यता से है।
7: ओ जी, ओ।
6: हाँ तो सृष्टि बेटी, हमारी मवेशियों की बढ़ती आबादी तथा मुख्यतः धान की खेती से मीथेन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पहले मीथेन का स्तर करीब 0.003% था जो अब बढ़कर 0.018% हो गया है।
4: अच्छा,
0: ऐसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 18वीं सदी की शुरुआत में 0.028% था जो अब 0.034% के करीब है।
8: लीजिए भाभी जी चाय, चीनी पूरे 3 चम्मच।
7: थैंक यू वसुधा। ओ जी डॉक्टर साहब, अब इतनी सी मात्रा बढ़ने से क्या होता है जी? अब चाय में चीनी 3 चम्मच डालो या 3.5, क्या फर्क पड़ता है जी?
2: हाँ मल्होत्रा भाभी जी, ये जानने के लिए तो आपको भी हमारे साथ रोज बैठना पड़ेगा। अभी तो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध समझाएंगे तभी तो आप 3 चम्मच और 3.5 चम्मच का फर्क जान पाएंगे।
7: ओ जी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी। मुझे तो मल्होत्रा साहब का और हैप्पी के लिए खाना भी तो बनाना है जी।
6: अरे नहीं नहीं नहीं, सारी बातें आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आप ये भी जानेंगे कि कैसे जंगल कार्बन और नमी का भंडार होते हैं और कैसे समुद्री जीव कार्बन सोखते हैं।
0: अब महासागरों में वातावरण के कारण महासंचार होता है और इससे समुद्री पानी के गुणों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है।
2: अब जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी प्रकृति महासागरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर उसकी ऊर्जा का स्रोत भी महासागर ही होता है।
6: बारिश आंधी आदि सभी इन महासागरों और वातावरण के आपसी तालमेल का ही नतीजा है। चलो मानव, आज तुम हैप्पी के साथ खेलने जाओ, पर कल हैप्पी को भी जरूर लेकर आना। और हाँ, तुम्हें और हैप्पी को मिलकर 4 सवाल जरूर पूछने होंगे।
2: एक मानव
4: जी।
2: हाँ चलो सूर्यप्रकाश, हम भी थोड़ा टहल आए, बैठे बैठे थक गए और लौट कर मुझे मानव की किताबों पर ड्राइंग भी तो करनी है।
7: अरे मम्मी।
2: अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, आप भी आना कल।
7: हाँ जी,
2: खूब सारी बातें करेंगे।
7: जरूर आऊंगी। वैसे मेरे हैप्पी को महासागरों के बारे में खूब पता है जी।
0: तो चलिए कल उससे भी मिल लेते हैं।
5: इस्लाम ब्रिज थोड़ा टहलाए, तुम भी चलो विवेक।
4: मम्मी, इस्लाम अंकल और ब्रज अंकल को कितनी जानकारी है ना?
8: बिल्कुल है बेटा, और तुम्हारी अल्पना आंटी को भी।
7: लेकिन मम्मी, वो इस्लाम अंकल मेरी किताबें गंदी कर देंगे।
0: भाई अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो तुम जाओ और खेल आओ।
7: अच्छा वसुधा, मैं चलती हूँ, कल अपने हैप्पी को लेकर आऊंगी। अच्छा सृष्टि।
4: अच्छा आंटी।
7: अच्छा अल्पना जी, बाय बाय
8: बाय बाय बाय बाय।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
6: ये तो तुम जैसा।
7: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है, कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
6: तो मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
7: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
6: अरे
7: अरे अनाया बात तो सुनो मेरी।
8: थैंक यू।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: पटिया।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आरके शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय देखें, बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, फिर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हीट स्ट्रोक
1: हो जाता है,
2: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना,

0: लेकिन बाहर कहीं आना जाना रखती हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है वो कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
0: लूज मोशन भी है
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
0: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी। तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको। ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें। कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
0: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
0: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
0: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पर इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तत्म भी हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंज से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यू कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

0: बसंती।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। गच लागे म्यूजिक प्रोड्यूसर, थिंकर, लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे. एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर. हे बाबू, हाँ बोल दे.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
1: FM। मुझे छेड़ना अच्छा लगता
2: है। और क्या अच्छा लगता
1: है? ये जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं। वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
1: मच्छरों से खुद को बचाना है,
2: मच्छरों से खुद को बचाना है।
1: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
2: दिमागी बुखार पर सीधा वार,
1: सुरक्षित होगा हर परिवार,
2: सुरक्षित होगा हर परिवार।
0: बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
3: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोना। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: सगरे गाओ की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
2: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
1: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
2: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पोन बदलने की जरूरत पड़ती है,
1: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
2: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
1: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
2: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
1: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है।

0: और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना